0: नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी हृदय रिमाल सँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ।
1: आज 2083 साल असार 22 गते सोमबार, सन 2026 जुलाई 6 तारिक असार कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि।
2: काया कैरन का साथमा
3: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
2: राष्ट्र कुसान किसान
3: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स।
0: काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबर का शीर्षकहरुबाट।
1: कर्जा सहजीकरण केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5555 7071 र 0855 5573 53।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98 5506 4040।
3: It's 9 o'clock, अहिले 9 बजेको छ।

0: मैं सूचक का साथ माँ
1: दक्षिण कोरिया माँ पढ़ाई रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिन इंटरनेशनल प्राली भरतपुर
2: हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन फोन 56 493 440 493 580 98 5 526 440
3: 10 o'clock, अहिले 10 बजेको छ।

0: दिस टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथमा
2: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5369 53 98550 77061 र 98550 77053
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4340 4395
0: It's 11 o'clock अहिले 11 बजेको छ।

0: दक्ष चिकित्सक, अत्याधुनिक प्रविधि तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सहितको पुष्पाञ्जली अस्पताल अब भरतपुर 10 बाल मन्दिर रोडमा।
1: अत्याधुनिक अपरेशन थिएटर, आईसीयू, ल्याब सुविधा, न्यूरोसर्जन सहित विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट सम्पूर्ण उपचार सेवा,
0: साथमा ब्लड सुगर, क्रिटिनाइन, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, युरिन रुटिन र विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श सहितको आरोग्य प्याकेज।
1: अब तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न पुष्पाञ्जली अस्पताल, भरतपुर 10 बाल मन्दिर रोड, एयरपोर्ट नजिकै। फोन 056-493-580, मोबाइल 98550-26440।
0: तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिबद्धता।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 0855 5570 53
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सभी रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440
3: It's 1 o'clock. अहिले 1 बजेको छ।

0: दिस टाइम चेक।
1: इस समय सूचक का साथ मा
2: दक्षिण कोरिया मा पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी। संपर्क 0656 5369 53 98 5570 7061 र 98 5570 7053।
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0656 4934 4493 580 र 98 5570 2640।
0: It's 2 o'clock. अहिले 2 बजे को सा।
4: Radio NRN 99.1 समय को ख्याल रखों। 2 बजे।

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7071 र 0855 7073 5853
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4043 4980 98 5506 4040
3: It's 3 o'clock. अहिले 3 बजे को सा.
4: इसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो.
5: राष्ट्र को सान किसान.
4: A complete piping solutions.

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 61 र 0855 7070 53
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4934 5880 र 0855 26 4740
3: 6 o'clock अहिले 6 बजेको छ
4: अष्ट विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क अहिले बेलुकीको 6 बज्यो
5: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
4: राष्ट्रको शान किसान
5: अ कम्प्लिट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: नेपाली पन को आभास नेपाली मन को आवाज
1: सुन हिउँ चुली पहाड़ पहरा सुन भीर पागल एक बेसी सारा सुन
0: स्वदेश FM 93.2 मेगाहर्ट्ज।

0: 93.2 MHz स्वदेश टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथ में
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन CMC हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656-59-69-98-550-77-61 र 98-550-77-53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0656-493-440-493-580 र 98-550-26-440
0: It's 5 o'clock अहिले 5 बजेको छ